कार्यक्रम सजीव समिति को निर्देशन विश्व एशियन गेम्स में नेपाल का 136 खिलाड़ी ने प्रतिस्पर्धा करने। इसका साथ ही अहिलेलाई खबर यति नै बिहार 9 बजे को खबर लेकर आउँछु। प्राविधिक मित्र विकललाई धन्यवाद दिदै समाचार कक्षका सम्पूर्ण सहकर्मी सहित म व्यक्ति बिदा हुन्छु। नमस्कार।

0: ढुक होइन ढुक्क हुँ प्रभु महालक्ष्मी लाइफ इन्सुरेन्स के अभिकर्ता बनाऊ
1: प्रभु महालक्ष्मी लाइफ इन्सुरेन्स लिमिटेड
2: समुदायका लागि समुदायको आवाज रेडियो धादिङ 106 मेगाहर्ज